ये वाज वाज रहे ने, इन्हों एक साथी है, एक साइड पर खड़ा है, उन कुछ नहीं नज़र आ रहा, एक पास पैसे नज़र आ रहे हैं। वो अपने साथी इशारा तन पैसों का कह रहे हैं।